दक्षिण वाले यज्ञ द्वारा पूजन से नहीं है। नो अदर वे टू डू इज अंतर्यामी इन ड्वेल ऑफ हार्ट्स। एकग्र बुद्धि उत्तम है। एकग्र मीन्स वन पॉइंटेड। एकग्र बुद्धि समटाइम्स इट टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली। एकग्र चित एकग्र बुद्धि। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स एंड कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द लॉर्ड। उपाय के नहीं मिले से देयर इज नो अदर वे टू अचीव व्हाट यू वांट। सेम विद अस, व्हेन वी वांट समथिंग इन दिस वर्ल्ड डोंट गो टेक इट फ्रॉम समबडी एल्स। डोंट सिट डाउन एंड प्लान हाउ टू गेट इट फ्रॉम द पर्सन विदाउट आस्किंग द पर्सन। गो टू गॉड, गो टू भगवान, आस्क हिम, प्रे, ही विल हेल्प, ही विल हेल्प। भगवान हेल्प्स। डोंट थिंक दैट द लॉर्ड डजंट हेल्प। द लॉर्ड हेल्प्स, ही विल हेल्प। ही इज देयर टू प्रोटेक्ट those who need protecting.

0: नारद जी बोले कुमार खेल के खिलाने आदे के वो आसक्त वो बालक को अपमान कर रहे हो से व्हाट यू गोइंग टू डू पेनेंस व्हाट यू आर लिटिल चाइल्ड लिटिल चिल्ड्रन इज बी प्लेइंग ऑल ओवर द प्लेस व्हाट सॉन्ग वी सिंग रॉन्ग बचपन बीता खेल खेल में बड़ी जवानी सोया देख बुढ़ापा जन रमा दिन को बीता दौड़ धूप में जल जाए राम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम तेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर में चोर जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम बचपन खेल खेल में जवानी सोया देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाई क्या सोया बचपन बीता यू वाज बोर्न व्हेन यू क्राई व्हेन यू डोंट क्राई यू कम बचपन यू कम लिटिल 5 ईयर ओल्ड एंड 6 ईयर ओल्ड टॉडलर एंड देन खेल खेल योर होल लाइफ गेट टेकन अप इन खेल खेल टू बी प्लेइंग हियर प्लेइंग देयर रनिंग यू नो लिटिल चिल्ड्रन लिटिल चंचल मूविंग बैक एंड फोर्थ खेल खेल सो या व्हेन यू बिकम टीनेजर व्हाट हैज हैपेंड What has happened when I become teenager? Oh my God, you were not teenagers? Chaudhari ka chand ho. Yeah. That is what has become when you become teenager. You start to fall in love. How do you English song does go? My heart is beating. बड़े जवानी उस जवान when he heart started beat what did I say young fellas training jagan na heart pumping and blood flowing once heart pumping is heart pumping or heart beating something fellas all with them young fellas and they yes heart beating and blood flowing yeah So, badi jawani so yeah. When you get young, you start to fall in love. Din to bita roop mein. Before you get to that. Bachpan. Khel khel mein badi jawani so ya.
1: Dekh budhapa, tu soche kya pa.
0: Dekh budhapa kya hai? Where is budhapa? Where is budhapa? Old age. When budhapa come, you walk in with stick now.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू the viewers and the listeners of Radio and TV Jagriti to join us every Wednesday from 5 to 6 p.m. where we speak about the glories of Sri Krishna Bhagwan on our program Krishna Arpanam. Bolo Sri Krishna Bhagwan ki jai.

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था आज प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। प्रभु ने कहा, क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यह व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है? केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है

प्रभु एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है, मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हैं, थोड़ा ही सा फर्क है, मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप इस भवसागर के मल्लाह हैं।

आयु है कि अभी चलना सीख रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखे ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

ना किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता, भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु से या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करे। बहुत सोचा और अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं।

0: Lelo, Lelo, do I ma bapa ki? It says, oh, take the blessings of your parents. Sarase uttaregi gathari papa ki. The bundle of sins will be relieved from your head. And I just translate one of the verses for you, friends. It says, God me ma ki ankh khuli jag dekha bap ke kandhe chadke. In my mother's lap, my eyes opened, and on my father's shoulders, I saw the world. Seva badke na hogi koi in dono ke seva se badke. No service will be greater than the service rendered to them both. Lelo, lelo, duai ma bap ke. And we just mentioned, of course, what greater blessing on this earth can come from anyone else apart from your parents. With their blessings, you can achieve the impossible. Special blessings to Counselor Alan Taxi Sipasar as he remembers his mom on the 7th anniversary of her passing. From Shalima Sohan, she says, the selections are really heart-touching, feeling every one of them from deep within. May you continue to enjoy, Counselor G, great health and strength to carry forward the legacy of your parents together with your siblings. And I know you also enjoy the bhajans by the late Pradeep. So we feature this one as well. And I'm sure we'll bring back many beautiful memories for you of Kavi Pradeep.
1: देश की आजादी के साथ धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए। बदनसीब इंसानों का ये काफिला उस भयानक रास्ते पर छोड़ दिया गया जहां जिंदगी रो रही थी और मौत हंस रही थी। यह कहानी उन करोड़ों में से एक नौजवान की है। उसके बूढ़े मां-बाप उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिए गए और वो हजार मुश्किलों से अपनी छोटी बहन और नन्हे भाई को लेकर इस आंधी से निकला। इंसान की इस हैवानियत को देखकर उसका दिमाग चकरा गया, उसका विश्वास हिल गया। भगवान की दुनिया में ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?

0: गली नंबर 420
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस
2: ओह माय
0: राइट मैं दुनिया पे अकेला हूँ
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री

ततो जयमुदीरयेत। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुलाद विन्दे तपत्र नेत्र येना त्वयवायद ततैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय तदीपा।

पान रोहिणीस्तनया प्रोक्तम नाम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबद कूतो देहंतरम विना कस्मा